नल कव पारस परस कच कंचना, नल कव पारस परस कच कंचना होए, चंदना सुबास जास सिमरत अनतार, जा के देखत दुआरे काम क्रोध ही निवारे जी, हम बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर, राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जग भयो आनंद, तारन मनुख जन कियो प्रगास, गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, पंचभूत बस कीने जमत ना त्रास, गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत, अग्न देखत गत चरण कवल जास, सब विद्मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न, राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, अरड जिसै तारियो तरत अर व्योम, अर पवन ते नीर सर, अवर अनल अनाद कियो, सस रिख निस सूर दिन सैल, तरु फल फुल दियो, सुर नर सप्त समुन्दर के तारियो त्रि पवन जास, सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास, कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पणयो, लोहो होयो लाल नदर सतगुर जा तारै, पाहण मानक करै ज्ञान गुर कहो बिचारै, काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तन के गए, सतगुरु चरण जन परसिया से पस प्रेत सुर नर पए, जाम गुरु है वल तने क्या गर्व दिजय, जाम गुरु है वल लख बाहे क्या किजय, जाम गुरु है वल ज्ञान अर ध्यान अनन पार, जाम गुरु है वल शब्द साखी सो सच्चै कार, जो गुरु गुरु अहनस जपै दास पट बेनत कह, जो गुरु नाम रिद मैं तरे सो जन्म मरण दो थेरे, गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे, गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अग्न कटे सब तेरे, गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कह, जिन गुरु ना देखियो नहो कियो ते अक्यथ संसार मह, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारन तरन समर्थ कल युग सुनत समाद शब्द जिसके रे, फुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बस तेह नेरे, पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे, जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पी उस पिवन की, बंछत सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठौर बसो, रस बासन से ओ जो दहंग दिस्तायो, गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, समर्थ गुरु सिर हथ तरियो गुर की नी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो निस बासर एक समान त्यान, सो नाम सुने सुत पान डरियो, पन दास सुवास जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो समर्थ गुरु सिर हथ तरियो, अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज, भगत प्रहलाद की हर नाग सफारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्तर दीन बहु साज, सो दामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे तेह काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए राखो दास पाठ की लाज, झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया, शब्द हर हर जपै नाम नाम निद अपै, रसन अहनस रसै सत कर जानिया, फुन प्रेम रंग पाईए गुरमुख ते आईए, अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानिया, बचन गुर रिद तरो पंच पू बस करो, जन्म कुल उधरो
द्वार हर मानियो, जाओ ता सब सुख इत्योत तुम बंछवो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर, अगम गुण जान निदान हर मंत्रो त्यान, अहनिस करो बचन गुर दै तार, फुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करो, संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर, सदा निर्वैर निरंकार निरपौ जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर, मुग्द मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर, गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई है, उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर, नाम नगहीर मन मिलत लेवलाई है, फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस, मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याई है, अमृत प्रवाह छुटकंत सा द्वार जिस, ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है, नाम निर्वाण निदान हर उरतर हो, गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे, जाकी सेव सेव सिद्ध साधक सुर असुर, गण तरह ते तीस गुर बचन सुन कन रे, फुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर कर, तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे, तरै नारदाद सनकाद हर गुरमुख है तरै, एक नाम लग तजो रस अन रे, दास बेनत कह नाम गुरमुख।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत जोग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए, गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसे बनवारी, तन लैणा थाप जोत जगतारी, लहणे पंथ कर्म का किया, अमरदास पल्ले कहु दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो, हर का नाम अखै निद अप्यो, हर नाम अखै निद चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियं, बंदे जो चरण सरण सुख पावै, परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप कोखण परणं, सतगुर गुरसेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, जेह अमृत बचन बाणी, साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल, गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ, कार मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा, हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै, तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट, प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै, प्रभाते करै इशनान, इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं, कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं, रहया पूर बहुविध वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रु जानी, तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं, जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत, परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर, मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसे दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महामग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲੱਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन ब्रह्मादक रुद्रादक, काल का काल निरंजन जचना, गुरप्रसाद पाई है परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद, आद जिस कोय न जाने, शिव ब्रंच तर ध्यान, नित जिस वेद बखाने। निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रसै, श्री सतनाम करता पुरख, गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को, फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को। मथरा जन जान कही जी साच, सो और कशु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग, सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिव तार ना तावत है। मथरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सब बेदर्त नागर। संत मराल करै कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरै फिरत, सगल जुग कबहो को पावै आत्म प्रगास कौ। वेद बाणी सहत बरंच जस गावै जाको, शिव मुन गहे नात जात कबलास कौ। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तेह लोग प्रगासे। देख दर्श पटक प्रम पजत, दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर, साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ।
दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ, ताहे कहा परवाह काहू की, जा कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही ओ पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अब नासिया चाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे, करण कारण समर्थ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं, तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करता।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिध पावै सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मन तुमली आगर प्रगट सुवास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजियो जो प्रगास जेह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सरनाई मोह मल बिवस कियो काम गै केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पात।

मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन भिखो नैण सत रूप सत नाम सत संतोख तरियो और आद पुरख प्रतख लिखियो अक्षर मस्तक तोर प्रगट ज्योत जगमग तेज पूमंडल छायो पारस परस परस परस गुरु गुरु कहायो पन मथरा मूर्त सदा थिर लाए चित सनमुख रहो कल युग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरो तेह जन जाचो जगतर पर जानियत बासर रैन बास जा कोहित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगे आओ बासना ते बाहर पै देखिया तताम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लागो बिन भगवंत रस नाही औरै काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्ब मैं अर्जन गुर भगत कै हेत पाए रहो मिल राम स्यो अंत ना पावत देव सवै मुन इंद्र महा शिव जो करी फुन बेद बिरंच विचार रहो हर जाप ना छाडो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रिष्ट निहाल करी रामदास गुरु जगतारण को गुरजोत अर्जन महे तरी जग और यहे महात्म मैं अवतार उजागर आन की आओ तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद्धत ते मत चूकै रे मन भेद बपेद ना जान बियो पर तच्छ हृदय गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लव नहीं पाग लिलार उदय तब लव प्रमते फिरते बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो काल समुद्र पै रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जाने पयो तह समसर सोई तरण गगन नवखंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पार पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन पर तख हर अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाचियै वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढोलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो सो कमन कह श्री गुरमोयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो रह सकियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंपै असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नर होके गुर रामदास जिन पायो शत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन।

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त व अजूनी सह

सदा बस्त तुम साथ। तन तन जे तो कौ दियो ता स्यो नेहो ना कीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम। कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए। कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत। कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो जाना।

कट कट में हरजू बसे संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार सुख दुख जे पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्तत निंदया नाहे जेहे कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जां कह नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जे बा गुण गोबिंद भजहो, करण सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी

और न लेत उधार। जो सपना अर्पेख ना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस्दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजय बिन सह नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कशु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले है, कहो नानक सुन।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोबिंद नाम, कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्व करत है देह को बिन सैशन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कै नाहे मन। जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजित नहीं नित। नानक एह बिदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरै गुमान। नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन जोत ते हीन। कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे। नानक थेर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान ले हो रे मीत कह नानक।

एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल, दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय, संग सखा सब

जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे मस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो, तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौसकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको बारा खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी

श्री राग स्यों पांचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावे पांचों संग बरंगन लावे सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे आसा गुन गुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचों चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबली तार नट औ जल तारा पुन गावे शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबे पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबे पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नाम दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पतकारा खाप अकाल पुरख वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शन योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शन दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शन योग है बख्शन दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति हुई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनिया पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौणियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदियां विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजिर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहे

बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभा।

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जोग

भाव हर त्यावहु संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तुम कट कट अंतर।

जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे।

माता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी, तब ताप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आद पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवट अवर ना कोई, तू जोग

तिन मुख तिके निकलहै जिन मन सच्चा नाउ कर्म मिलै ता पाइयै नाहीं गल्ली वाओ दुआओ एक आवह एक जाहे उठ।

जिन कौ सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोय। ऊना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए। नाओ पूजिए नाओ मनिए, अखंड सदा सच सोए।

ना पहावई ता सब अडंबर कूड़। सब रस भोगण बाद है, सब रस भोगण बाद है, सब श्रृंगार विकार। जब लग शब्द ना पे

जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो भाव जल पचाय पचाय यो मानक जियो निर्मोल है यो कौडी बदलै जाय जिन्ना सतगुर रस मिले से पूरे पुरख सुजान गुर मिल भाव जल लंघी है।

क्यों बुझै जान है बुझाई, आखन सुनना पौन की बाणी। इहु मन रत्ता माया, खसम की नदर दिल है पसंदे, खसम की नदर दिल है पसंदे, खसम की नदर।

पाया नाम निदान, अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान। सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हौ मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार, हौ तिन कै बलिहारण जिन्ना नामे लगा प्यार, सेई

दया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से तिल बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

मुख सद उज्जले तित सच्चै दरबार। वही अमृत पीवह सदा सदा सच्चै नाम प्यार। पाई रे गुरमुख सदा पत होए हर हर सदा त्या।

पार। गुरमुख जब तब संजमी हर कै नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याई है एक नाम करतार। नानक नाम त्याई है सबना जिया का आधार। श्री राग महला तीजा। मनमुख मोह व्यापया बैराग उदासी ना हो। शब्द न चीने सदा दुख हर दरगाह पत खोए। हम मैं गुरमुख खोइए नाम रते सुख होए। मेरे मन अहंस पूर रही नित्यासा। सदगुरु सेव मोह पर जलय कर ही माहे उदासा रहा। गुरमुख कर्म कमावे बिगसै हर बैराग आनंद। अहंस भगत करे।

नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पैके ही लाग श्री राग महला तीजा घर ही सौदा पाई आए अंतर सब वथ होए खिन खिन नाम संभाली आए गुरमुख पावे कोए नाम निदान अखोट है।

आए सतगुरु वचन रतन है जो मने सो हर रस खाए सेवड़ भागी बड़ जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए इहो हर रस वण तिन सबत है।

जिन सब किछ वस कीता, घर इको बाहर इको, थान थनन तरे आप, जी जंत सब जिन किए, आठ पहर तिस जाप।

पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ विनसया तजया सब अभिमान।

आप होवा मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा, पूरा सतगुर जे मिलै पाइय शब्द निधान। कर कृपा प्रभ अपनी जपिय अमृत नाम, जन्म मरण दुख काटिय लागै सहज ध्यान। मेरे मन प्रभ शरणाई पाए, हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए। रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह, वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह। कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह,

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सदगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा।

तेरा भरपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान नानक जपिया सच नाम हो सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वड भागी तन खात संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू।

नजर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहा।

होए रहाव। सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर सालाही है, करण कारण समरथ, से मथे नेचल रहे, जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया, पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागे डंड। गुर नाल तुल न लग गई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

या सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना, सच छड जासी लख करोड़, सर पर उठी चलना, छड जासी लख करोड़, लख

रहाउ। जिचर वस्या कंत घर जियो जियो सब कहात, जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात। पेयड़ै शहु सेव तू साहुरड़ै सुख वस, गुर मिल चज आचार।

आवहुमन मेरे सर्ब को आधार, गुर के चरण मन माहे त्याए, गुर के चरण मन महे त्याए, छोड़ सगल स्यान पां, साज शब्द लिवलाए रहाओ, दुख क्लेश ना पौ व्यापै, गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोई, देख दर्शन मन साधारे, पाप सगले जाहे, हौ तिन कै बलिहारने, जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन बसै, साच हर का नाउ, सेवड भागी नानका, जिन्ना मन इहो पाओ, श्री राग महला पंजवां, संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया, हर सिमर होए उधार,

करणी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव पाव निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दो कृत सो कृत मंधे संसार सगलाना दोहूं ते

वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

सभी मद सभै ते बाहर बे मोहताज बापा पिता हों जानो नाहीं तेरी कवन जुगता बंधन।

गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुर दाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार।

सच्चा नाम सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाई सच नाम गुणतास।

दर दरवेशर सीद बरकत तिनको अगली पढ़ दे रैन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़ दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे।

ना जाए। नित रवै सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है। कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार। नारी

श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहज

तब लग महल न पाइये, जब लग साच न चीत, शब्द रपै कर पाइये, निर्वाणी पद नीत। हों गुर पूछो अपने, गुर पुछ कार कमाऊं, शब्द सलाही मन बसै, शब्द सलाही मन बसै, हों मैं दुख जल जाऊं।

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुण चार साच मिलहो वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन कन साच विगसिया कीमत कहन ना जाए हर बार कर सोहागनी निर्मल साचै नाए मन मह मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार इकत ता दैरल मिले गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजय खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाणै रब।

अब पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले।

तिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजै हौमै मैल न जाए सोहं आप पछाणिए शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पछाणिए।

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला मन मुख भुलै भुलाई फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोया।

नानक तरियै सच नाम सिरशाह पातशाह। मैं हर नाम ना विसरै हर नाम रतन बेसाह। मनमुख पौ जल पच मोए गुरमुख तरे अथाह। श्री राग महला पहला घर दूजा

मन मुख पात गवाई बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई पेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया आनंदन भगत कर

पंखी बिरख सुहावड़े ऊट है चौं दिस जाए, जेता ऊट है दुख घणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ, तिन्ना पास न बैसिय ओना कर ना गिराऊ। कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द।

सत समाए, हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए, पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए, गुरमति हर सदा पाया, रसना हर रस

राता प्रभ निकट वसै सबना कट अंतर गुरमुख विरल जाता नानक नाम मिले वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नु

ना गुर कै शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरणा वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन बसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई एक ना मनमुख शब्द न पावै।

जामको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कुटांब पलेटिया कदे हरख कदे सोग गौण करे।

आए जियो। हों सतगुर विट हों कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लै रलाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जां कौ जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो।

चले मूल गवाए जियो। तू वरना चिहना बाहरा, हर दिसह हाजर जाहरा। सुन सुन तुझे ध्यान दे, तेरे भगत रते गुणतास जियो। मैं जुग जुग दई ऐसे बड़ी, गुर कट्टी मेहंदी जेवड़ी। हों

ज्यों जसदा कर कान हथो हथ नचाइय प्राणी मात कह सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा।

झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुविधा व्यापै दूजा तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा सर हंस उलथड़े आए जोबन घटै जरुआ जणै वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंधले जां जम पकड़ चलाया।

खोवहो। गुर सतगुर स्वामी भेद न जानहु, जित मिल हर भगत सुखांदी। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, सफलो रैन भगतां दी। श्री राग महला पंजवां।

कहो नानक भगत सोहें दरबारे, मन मुख सदा पवात, श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंद इयाणी पे यड़े क्यों कर हर दर्शन पिखै, हर हर अपनी कृपा करे, गुरमुख सौहरड़ै कम सिखै, सौहरड़ै कम सिखै गुरमुख, हर हर सदा त्याए, सहियां विच फिरै सुहेली, हर दरगाह बां लुड़ाए, लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम के रखै, मुंद इयाणी पे यड़े गुरमुख हर दर्शन दिखै, व्याह हुआ मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लाधा, हौं मैं रोग गया दुख लाथा, आप आपै गुरमत खादा,

दूख मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु न चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली, मन प्यारिया जीओ मित्रा, कर संतां संग निवासो, मन प्यारिया जीओ मित्रा, हर नाम जपत परगासो, सिमर स्वामी सुख है गामी, एछ सगली पुनिया, पुरबे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरी बिछुने आम, अंतर बाहर सरबत रविया, मन उपजया विश्वासो, नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संतां संग निवासो,

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाओ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

रंग रतड़ा हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन वन जवा।

मन मूर्ख मिलै सजाए, जिन जियो पिंड दिता तिस कब हू ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे, जम का फाहा गल हुन कटिए, फिर आवै जाए, मन मुख किशु न सूजै अंधले,

कमाए कूड़ कुसात कमाए गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए पौड़ी। हर के संत सुनहु जन पाई हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन लय हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

लाए, विच हो आप गवाए, कह रहन सच लिव लाए। सतगुर जिनी ना सेवे तिन्ना बिरथा जन्म गवाए, नानक जो तिस पावै सो

देओ पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाना सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवे दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख पाप

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम

गर्भ कुंडल जब आशत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मदना अहनस एक अज्ञान सो नांगा। दे दिन संबल कष्ट महा दुख ते दिन संबल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल।

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी।

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत हर नाम ते आइए नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मनमुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरे बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला, शब्द आनंद करे सद केला। सहज गुफा महताड़ी लाई, आसन ऊच सवारिया जियो। फिर घिर अपने ग्रह में आया, जो लोड़ींदा सोई पाया। तृप्त अगाए रहया है संत हो, गुर अनुभव पुरख दिखारिया जियो। आपे राजन आपे लोगा, आप निर्वाणी आपे भोगा। आपे तख्त बह सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया।

परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मोहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर ध्यावह गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाइय होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूज है पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकांति जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिय गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा कहे।

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो। दुख पंजन निदान अमोले निरभौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपौ मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला।

ज्यों बारिक तीखीर अगावै, ज्यों निर्तन तन देख सुख पावै, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियारै दीपक परगासा, परता चितवत पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोकौ हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे। हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवां, अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चख सगले देखे।

ठाकुर सब बिद जान है, ठाकुर के सेवक हर रंग मान है। जो किश ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जा हर जियो। अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बलाया। इस सेवक कै नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गौहर जियो। माज महला पंजवा, सब किश कर्म है बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही।

प्यारा अनंत विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया।

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

सो सच स्वामी, रिजक सब सकौ दीए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाई, सब पौ बिनसै हर हर त्याई।

सबल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा नाहीं, बाबा नानक ए मत सारी जियो, माज महला पंजवां।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बहां पकड़ तिस स्वामी मिलै, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

जिस आप भुलाए सो किथै हथ पाए, पूर्व लिखिया सो मिट ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से बड़भागी, पूरे कर्म मिला बणिया। पेई अड़ै तन अन दिन सुती, कंत विसारी अवगण मुती। अन दिन सदा फिर

मानमुख मुगद करह चतराई ना ता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जासी कर अवगण पछोता बनिया मानमुख अंधे किशु ना सूझै मरण लिखाए आए नहीं बूझै मानमुख कर्म करे नहीं।

है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया मन मुख भूला दूजै पाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए आन दिन सदा विष्टा महवासा बिन सेवा जन्म गवावणिया अमृत पीवै जिसनों आप पियाए।

काई बिख बिहाज है बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी को जाना दूजा मार मन सच समान।

गुरमति आप बुझावणिया रहाउ। सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेव्या प्रगट होई। गुप्त प्रगट वरतै सब थाई, ज्योति जोत मिलावणिया।

शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विचो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख होमै चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल।

आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरणा खाणी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सियापै जिन पिया से ही तृप्तता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहै कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन विद

आए जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत है ना जाए प्रभु बिन दूजा को नहीं प्रभु बिन दूजा को नहीं।

वही लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा ब्रह्म मिले ता उतर है सब वियोग नानक को प्रभु राधा।

चाहो भूख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे परवाहो माग मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याय सुन सबनानो कर दान जन्म

गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेवहु सत निरंजनो हर पुरख बिधाती तू आप सुजान है वट पुरख बिधाती।

पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नै जलो, अन्न पौन फिर ना कोई, एक तुई महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कुई, एक तुई महला पहला।

समरथ है कहो नानक बिचार कारण करते वस है जिन कल रखी धार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसया सच्चा खसम कलान कमल विगसया खसम हूं पूरा पाया।

मैं बनजारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसा सहज शब्द विचार।

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै, नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पा

इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आप तरह सगले कुल उधारा, इस काल युग में कर्म

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वस्या मन आए, आन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरै प्रतीत होए हों मैं तजे विकार, जन नानक करमी पाइन हर नामा भगत पंडहार। गौड़ी बैरागण महला तीजा, पेई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया। सोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया, पेव कड़े गुण समलै सहुरे वास पाया। गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया, ससुरै पेय फिर वसै कहो कित विद पाइय।

मुरारा, शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हों जीवा, हर बिन चसा ना।

तार भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुना।

दिन सजाए पूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड ते आगे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग लग प्यावै।

अर्थ सब माया। कै बंध है कै दान ले, कै नरपत मर जाया। धन धन सेवा सफल सतगुरु की, जित हर हर नाम जप हर सुख पाया।

जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे, जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्ते।

ता हर नाम मन चित नित त्याव हो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया धारी, तिन जम जोहन लागे, उन सतगुर आगे सीस ना बेचया, ओए आवह जाहे अपागे, हमरा बिनो सुनहु प्रभ ठाकुर।

पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी मिल

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो मन

इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हा

सूजन इत उत्कत है ना डोले जाके हर तन सो सच शाह गुर पूरे कर दीनो विसाह।

रिद सिद्ध बुलावों, ताज कुल है सिर छतर बनावों, बिन जगदीश कहां सच पावों, खान मलूक कहावों राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द न

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे।

पुर शब्द विचार चंचल मत त्याग पंच संहार अंतर साच सहज कर आव है राजन जान परम गत पाव है सच करनी गुर परम चुकाव निर्भौ कै कर ताड़ी लाव हों हों कर मरना क्या पावे पूरा गुर भेटे सो चगर चुकाव।

पहला प्रथमे ब्रह्मा कालय घर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजय सो काल संघारिया।

सी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना ना मोह भूले जम का दुख सहना मैं तार नाम ज्यों राखो रहना।

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मह एको रवै।

आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझी ऐ सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पहाओ, परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबह न जाए।

मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, शास्त सिमरत सोध देखह कोए, बिन नामै को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कलमह

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

मोह अत भरम पुलहाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रत्ते सदा बैरागी, गृह अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेव है से बड़भागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण भरमे नाही निज कर वासा।

परम पुलहाए मानमुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सहे सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई होमे मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई।

होई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावै नामो सेवै नाम सहज समावै।

दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम लिवलाई। गुर मिले हम कौ शरीर शुद्ध पई, हौमै तृष्णा सब अग्न बुझई।

वे मुख बुरे दिसन अन बिन बद्धे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुण सार रहाओ से भगत हर पाव दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओ क्यों मनहु विसारिय हर रखिय हृदय तार नाम

पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना। सहज सुहे

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किछ ताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर मह दीपक जलियो, जीत

गए। जास जपत बस आव है पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगह सि

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तहार।

परमानंद। सहजे अमृत पियो नाम, सहजे कीनो जी को दान। सहज कथा मह आत्म रसिया, ताके संग अविनाशी वसिया। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द बजाया।

दिन सबेताला गिर तर धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सो ई जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

धर्म घाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया।

धारिया गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक बलहारिया सब गुण किस ही ना है हर पूर पंडारिया चहुं दिस जपिए नाऊ सुख सवारिया मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलहारिया गुर का

मंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृद्ध संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो दर्श हर रायो ना

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तु

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको।

मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहै हो आवे जाए टहत टहत अब टह परे साध

थित पाव हो गोविंद भज हो संत हैं की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यो या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

होत सब जाकी, तज अभिमान छुट्टै तेरी बाकी। रण दरगह तौसी जह पाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह जाहे।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल पौड़ी। अखर महंत्र पवन प्रभ तहारे अखर कर कर वेद बिचारे अखर शास्त्र सिमरत पुराना अखर नाद कथन बखियाना अखर मुकत जुगत पह परमा अखर मुकत जुगत पह परमा अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

पंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरुधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर।

नमः सद्गुरु ए नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधाखियर कीने राम नाम एक आखियर।

सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन दिन सह दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभु कै सिमरन हुए सो पहला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला।

से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरहें से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरहें से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरहें से सुखवासी प्रभ कौ सिमरहें सदा।

बलिहारी प्रभ कौ सिमरहे से मुख सुहावे प्रभ कौ सिमरहे तिन सुख बिहावे प्रभ कौ सिमरहे तिन आत्म जीता प्रभ कौ सिमरहे तिन निर्मल रीता।

अष्टपदी। जह मात पिता सुत मीतना पहाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल होवे अत पहारी, हर को नाम खिनमा है उदाहरी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरुमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग ते

एक अनेक अगन नहीं बुझाए, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझाए, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिनतू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उबारिया बार व्यवस्था तुझह प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद

दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाहे कश करे छिपाया बाहर

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभता कह जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास

सो पंडित जो मन प्रबुद्धय राम नाम आत्म महसोदय राम नाम सारस पीवय उस पंडित कै उपदेश।

कारी धारी सब सृष्ट आपे आप सकल मह आप अनेक जुगत रच थाप ओथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड।

मन त्यों गुरका शब्द मन है अस्थम मन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुरचरण लगत निस्तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रगास।

आप अष्टपदी जब अकार एहुकाश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस

श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।

पंच प्रधान ते जिह जान्यो पर पंच कुसंबास बहुरंग कणो सब मिथ्या बल बंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत विचार स्वाद मोह रस बेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहुजोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत।

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े,

हर वस संभाले, नाम निधान हर बन जिये, हीरे पर वाले, विण काया जे होर थै तन खोज दे, से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाई है, ज्यों चाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा

मन खोटे कूड़ कूड़ियारे। जां गुर कहै उठो मेरे भाई, बह जाहे पुसर बगलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै, चुन कढे लद्दो वारे। ओए अगै पिछै बह मोह छपाए।

कहे बड हम ही जिसह बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुर मिले अंधेरा चूक इन विद्मान कलही है।

जह अबोल तह मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई, अलह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार, बटक बीज महराव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार, अलह लहंता अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग अशेद।

देख बहु करै दुख बिखिया सुख तन पर हरै काम क्रोध अंतर तन हिरै दुविधा छोड़ नाम निस्तरै सिफत सलाहन सहज आनंद सखा सैन प्रेम गोविंद आपे करे आपे बख्शिंद तन

चौथा गुण गावां गुण बोली बाणी गुरमुख हर गुण आख बखाणी जब जब नाम मन भया आनंदा सत सत सत गुर नाम दृढ़ाया सत सत सत गुर नाम।

परण शोभा कंठ फूले प्रत्यक्षी दृष्ट पाए सगल निधान दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

छोड़ चलै अभिमानी, काहे एक बिना चित लाइए, उठत बैठत सोवत जागत, सदा सदा हर त्याइए रहाउ।

आढ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।